सन्न चाँदी न जिब्रो बटाके हो यस्ती मोरी त थुप्रै पाइया छ ए हो यस्ती मोरी त थुप्रै पाइया छ पारिजात वाइबा पारिजात वाइबा।

छी कस्तो रहेछ बिना के न हो गम के को किस्तो सुन्दा फुरुङ भई लहरे ढलके को लेकिन साले क्या है बंदे चुरुट हिरसल के को केना भूल्छस लहरे दाई लुट।